जो सेवह तुद जन नानक तिन कुरबान। हर त्यावै तुद से जन युग मह सुखवासी। से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी।

जिसनु तू जाना ही सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव यतन सुख पाया

तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सु तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन

तनक महे हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश्वत सकै न कोई। एक बार जंत मैं संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम ते हारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के मैं शरण ते हारी, आप हाथ दले उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहु बचा। सुबैया

मुख निंदक कै शाई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी वड्डे भागां वाले गुरु चरणां विच बैठ करके सतगुरु जी दियां बख्शिशां प्राप्त कर रहे हो। आओ शाम दे समय सतगुरां दी पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करदे हां। जो बच्चे गुरद्वारा साहिब सुख सागर विखे कीर्तन दी सिख्या प्राप्त कर रहे हैं उन्हां बच्चियां वलों आओ प्यार सहित आरती दा कीर्तन उपरंत पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करदे हां। उस तो उपरंत कथा विचारां होणगियां अते विशेष तौर ते पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनीए भाई साहिब भाई निरंजन सिंह जी जोधी कलां वाले जो पिछले दिनां तों शाम दी हाजरी भर रहे हन वो आप संगतां नूं ठीक 7:15 बजे तों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण कराउणगे। अज दा ते कल दा दिन भाई साहिब जी दे कीर्तन हाजरी दा जो गुरद्वारा साहिब विखे बणिया होया प्रोग्राम अज दा दिन ते कल दा दिन है। आप संगतां नूं बेनती है कि वध तों वध संगतां गुरु चरणां विच पहुँच करके साध संगत जी कीर्तन दा आनंद प्राप्त करो अते सतगुरु जी दीआं असीसां प्राप्त करो जी। आओ प्यार सहित बच्चों पासों कीर्तन सरवण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाह पातशाही दसवीं शपै छंद व प्रसाद चक्र चीन या भरण जात अर पात नहर जे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के अचल मूल तेन पा प्रकाश अमतोज गहिजै कोट इंद्र इंद्रान साहे सान गणिजै त्रे भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत मंदरन कात तवै सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वरण सुमत भुजंग बरियाद छंद नमस्तमंग अकाले नमस्तमंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्म नमस्तंग धर्म नमस्तंग नाम नमस्तंग धामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग ढाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सवेक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग निरथा नमस्तंग धर्माने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग दरवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तस्त रमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अभेसे नमस्तंग निरतामे नमो नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वबाले नमस्तस्त दिवै नमस्तंग भीवै नमस्तंग जन्मे नमस्त सवर्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वभौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो कालकाले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग भरणे नमस्तंग भरणे नमस्तंग जलारंग नमस्तंग गरदारंग नमो सर्वतंदे नमो साबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग गरीमे नमस्तंग आनंदे नमस्तंग महंदे नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसुख नमो सर्वभूख नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जगे नमो भव भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद वै प्रसाद अरूप है नूप है जू है अबू है लेख है भीख है नाम है काम है अदेह बेह जीत है पीत है त्रमान है दान है त्रवर्ग है सर्ग नील है नाद है अजय है जान है जन्म है मरण है भूत है परण है गंज है पंज है चूज है चंज है अमीक है रफीक है तंद है बंद है मूज है नरबूज है नरबूज है सूज है काल है अजाल है अला है अजा है नंद है महंद है अलीक है नरसरीक है नरलंब है संभ है गम है जम है भूत है छूत है अलोक है शोक है कर्म है ब्रह्म है जीत है पीत है वाह गाह मान है दान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रिया
ਹਰ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਮਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਦਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਦਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਨਾ ਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਨ ਬਾਧੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਾਥੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਾਥੀ ਬਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕਮ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋ ਜੁਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੀ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਾਤਾ ਨਮੋ ਲੋ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀ ਅਪਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਦੇ ਨਮੋ ਜੋ ਜੁਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਗਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇ ਦੇਵੇ ਸੋਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਾ ਸਾ ਨਮੋ ਭੂ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਜਨ ਜਨਤਰੰਗ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤਨ ਤੰਤਰੰਗ ਸਦਾ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਰਬੰ ਵਰਾਣਸੀ ਆਰੂਪੇ ਆਰੂਪੇ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿਧਦਾ ਬੁੱਧਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ ਅਦੋ ਉਰਦ ਅਰਧ ਅਗੰ ਓਗ ਹਰਤਾ ਪਰਮ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰ ਬਰੋਸ਼ ਬਾਲੰ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਸਿਧਾਤਾ ਦਿਆਲੰਗਾ ਸ਼ੇਦੀ ਅਭੇਦੀ ਅਨਾਮੰਗਾ ਕਾਮੰ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸਤ ਕਾਮੰ

आ गई सर, कोई नहीं कोई कोई नहीं कोई नहीं बह जाओ, कोई नहीं आ जाते नाले बाबा जी आ जाएंगे। जाने वाहेगुरु।

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रेतम भगवती सिमर कर गुरु नानक नहीं दयाय। फिर अंगद गुरुदेव अमरदास राम दास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंदरो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण सब दुख जाय। तीख बहादुर सिमरिया करनो दयावताई सब ताई हुई सहाय। दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद साहिब जी सब ताई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौवां साहिब जालियां चालियां मुगतियां अठियां जपियां तपियां जिन्दा नाम जपियां पड़ गया। दे चला तेग वाही देख

गुण निंदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, आस मनोरथ पूरन होवे, पेट त गुरदर साया जियो, आगम अगोचर किश मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे।

कथा सोंत मल सगली खोबे पेटच सांग सा संतन के सदा जपों दी अल्लाह जियो प्रभ अपना सास सास समारो ए मत गुर प्रसाद मन तारो तुमरी कृपा ते होई परगासा सर्व मैया प्रीत पाला जियो सत

गावत सुनते सभी मुकते सोत आइये जिन हम किए जियो जन्म जन्म के किल विख जावे मन चिंदे से ही फल पावे सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजक सब सो को दिए जियो नाम जपत सर्ब सुख पाइए सब पौ बिन से हर हर त्याइए

साकत संग भी कर्म कमाए, दलाब दे खोई अज्ञानी, जड़ अपने आप अपाड़ी जियो, तेरी शरण।

राखो शर्म असड़ी जियो, माज महला पंजवा, चन ठाकर के हृदय समाणे, काल कले सब दूर पया ने, शांत सुख सहज धुन उपजी, साधु संग

सिमर सिमर सिमर गुण गामा, काटिए जम की फसा जियो। अमृत वरखे अनहद वाणी, मानता ने अंतर साथ समाणी। तृप्ति अगाए रहे जन तेरे, सतगुर किया दलासा जियो। जिसका साथ इस ते

जपे अपने संतानु आप सहाई प्रभ परम पलावा लाया जियो चरण कमल जन का अदारो आठ पैर राम नाम बपारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याइए सोरिदा सहेला जित हर गुण गाइए सात अर्थ स्वभावी जित बसे

सोई नानक सच धियाइए सधी अंतर जामी जाने जियो माज महला पंजवा रैन सहाबड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम सात संगम संत संग मेला कड़ी मूरत सिमरत पल बंजे जीवन सफल थाई

आप अकंती आप पसारा, लेपने जग जीवन दाते, दासन डिठे लैन बजोगा जियो, अंचल लाए सब शिष्ट तराई, अपना नाओ आप जपाई, गुर बहुत पाया किरपाते, नानक

कर सच दड़ाए, गुर प्रसादी सच चित लाए, सचो सच बरते सवनी थाई, सच्चे सच समा बनिया, बेपरवाओ सच मेरा प्यारा, किल बिखी अवगुण।

आंधी ने सार संभाले, आंधी ने सार संभाल हर राखे, गुरमुख सहज सभा बणिया, तुद जीवन में होर न कोई, तुद आपे सिरजे आपे गोई, तू आपे ही घड़ पन सवारे, नानक नाम सुहावणिया।

हरदर्श पावणिया एकम एक आपे अपाया दुबदा दूजा त्रि बद माया चौथी पौड़ी गुरमुख उच्ची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सहज समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे सच्चे जाए समावणी।

गुरु के सावद तिखा नवारी सहजे सुख समावणिया रतन पदार्थ पलड़ त्यागे मनमुख अंदा दूजे पाए लागे जो बीजे सोई फल पाए सुपने सुख न पावणिया अपनी कृपा करे सोई जन पाए गुर का शब्द मन बसाए आंदिन सदा रहे पै अंदर पै मार परम चुकावणिया परम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल वाणी हर गुण सहजे का बणिया सिमरत सास वेद बखाने परमे पुला तत न जाने बिन सतगुर सेवे सुख न पाए दुखों दुख कमा बणिया आप करे किस आखे कोई आखण जाइए जे पुला होई नानक आप करे कराए नामे नाम समावणिया माज महला तीजा आपे रंगे सहज सवाए गुर के शब्द हर रंग चढ़ाए मन तन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावणिया हो वारी जियो बारी निरपौ मन बसावणिया गुर कृपा ते हा निरपौ ते आया पिख पौजल शब्द तरावणिया राव मन मुख मुगद करे चतराई नाता तोता थाए न पाई जेहा आया तेहा जासी कर अब गुण पुछता बणिया मन मुखे अंधे कुछ न सूझे मरन लिखाए आई नी बूझे मन मुख कर्म करे नहीं।

बेला भक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन पाया, सच्चे सेविए सच बड़ियाई, गुर कृपा ते सच पावनिया, पाओ भोजन सतगुरु तुठे पाए, अन रस चुके हर रस मन बसाए, सच संतोख सह सुख बाणी।

बिस्टाके कीड़े बिस्टा कमावे फिर बिस्टा माहे पचा बनिया मुकते सेवे मुकता होबे होमे ममता सब देखोबे अन दिन हर जियो सच्चा सेवे।

पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार न पावणिया आपे रंगे रंग चढ़ाए से जन राथे गुरु शब्द रंगाए हर रंग चढ़िया यात अपारा हर रस रस गुण गावणिया गुरमुख रिद सिद्ध सच संजम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई गुरमुख कार सच कमावे सच्चे सच समावणिया गुरमुख थापे अथापे गुरमुख जात पात सब आपे नानक गुरमुख नाम त्याए नामे नाम समावणिया माज महला तीजा उत्पत पालो सब दे होवे सब दे ही फिर उपत होवे गुरमुख वरते सब आपे गुरमुख वरते सब आपे सच्चा गुरमुख।

गुणख गुणी समावणया रहा गुरमुख धरती गुरमुख पाणी गुरमुख पवन बसंत रखेले बड़ानी सो नुगुरा जो मर मर जमे नुगुरे आवण जावणया तिन करते एक खेल रचाया काया शरीर बिच सब किश पाया।

पंखी क्या आकाश, पत्थर पाला क्या करे खुसरे क्या करवास, कुत्ते चंदन लाइए पीसो कुत्ती तहात, बोला जे समझाइए पढ़िए स्मृत पाठ, अंधा चानण रखिए दीवे बले पचास, सौं चौने सोना पाइए चन चन खावे घास, लोहा मारन पाइए टह न होए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश। महला पहला। कह कंचन टुटे सार, अग्नि गंड पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार, पुत्ती गंड पवे संसार, राजा मंगे दित्ते गंड पाए, भुखिया गंड पवे जा खाए, काला गंड नदियां मी झोल, गंड प्रीति मिठे बोल, बेदा गंड बोले सच कोए, मोहया गंड नेकी सद होए, एत गंड वरते संसार, मूर्ख गंड पवे मोहि मार, नानक आखे विचार, सिफ ते गंड पवे दरबार। पौड़ी। आपे कुदर साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखणहार, करे खजाने पाइए खोटे सटिए बार बार, खोटे सच्ची दरगै सुटिए किसी आगे करे पुकार, सतगुर पिछे भज पवे हा करुणी सार, सतगुर खोट्यों खरे करे शब्द सुबारण हार, सच्ची दरगै मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत दिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार। श्लोक महला पहला। हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाय काराया, मेहरबंद बादशाह फजू खुदाए, एक तू ही मेला पहला। न देव दान वानरा, न सिद्ध साध कातरा, आस्ते एक दिगर कुई, एक तू ही महला पहला। न दांदे देहंद आदमी, न सप्त जेर जमी, आस्ते एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। न सूर सस मंडलो, न सप्त दीप न जलो, अन्न पौन थिर न कोई, एक तू ही महला पहला। न रिजक दस दिया खसै, हमारा एक आस वसै, आस्ते एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। परंदे ना गिरा जर, दरख्त आब आस कर, देहंद सुई, एक तू ही महला पहला। नानक लाल लिखिया सोए, मेट न साके कोए, कला तरे हिरे सुई, एक तू ही पौड़ी। सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमती आप गवाए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द साणिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मनमुख सदा कुड़ियार भरम भुलाणिया, विष्टा अंदर वास साथ न जाणिया, बिणना में दुख पाए आवण जाणिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। श्लोक महला पहला। शीहां बाजां चरगां खूहियां, इना खवाले कहा का खा, तिन वासख वाले एह चलाए रहा, नदियां बिच टिब्बे दे खाले थली करे असगा, कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुहा, जेते जी जीवे लसा, जवाले ता कै असा, नानक जी जो सच्चे पावै ते तू दे ग्रहा। महला पहला। एक मास हारी एक तनखाहें, एक न छत्ती अमृत पाहें, एक मिटियां में मिटियां खाहें, एक पौन समारी पौन समार, एक निरंकारी नामदार, जीवे दाता मरे न कोए, नानक मुठे जाहें नहीं मन सोए। पौड़ी। पूरे गुर की कार कर्म कमाई है, गुरमती आप गवाए नाम ते आई है, दूजी कार लग जन्म गवाई है, बिरना में सब विश पेंजे खाई है,
ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਈਐ ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਰਾ ਸਲਾਹੇ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਈਐ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਵੇ ਗਾਵੇ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਜਲਣਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਪਬੂਤਾ ਸਿੰਘੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਕਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਰਸ ਕਸ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤੇਗ ਵਗਾਵੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡੀ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਜਾਏ ਦਸੰਤਰ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਆਵੇ